रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार बहम बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चले वडावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

अब हम चले ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावै मार, लोकन की चुतराई उपमा, ते बैसंतर जार, कोई भला कहो पावै बुरा कहो, हम तन दियो है टार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राख हो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राख हो लाज मुरार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राख हो लाज मुरार, सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी, प्रै प्रेम सहज मन अंध तरोरी, प्रभ मिलवे की लालसा, ताते आलस कहा करोरी, करमय अमृत आन निसारियो, खिसर गयो भूम पर डारियो, साध मुहिलादि अहंकारे, दोष नाहीं प्रभ करना हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सृजन हारे, रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली, सो कहो टल गुर सेविया, अहंस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमंदी, नूर अरसों कुरसों, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी, सजन सच्चा पातशाह, सिर सहांदै जिस पास।

नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिसको बलहार, तिसके संग तरे संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूरा।

0: छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज वस गोविंद दास तुहार।
1: सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज वस गोविंद दास तुहार।
0: वाहे खालसा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहो सरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहो सरणाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुध डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार, ताप ताप खापा बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए, जियो तपत है बारो बार, ताप ताप खपा बहुत बेकार,

फिर सार नानक साचा सर्वदातार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाल पै दुख विनाशन भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचुत बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगाई पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तेना रखन हार सब व्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाय सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरते आखिए करते का होए विचारो तित कर गावहु सोहिला सिवरहु सिरजनहारो तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला हौं वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालियन देखैगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मेल कर पावहु तेल देहो सजण असीसड़िया जे होवै साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवाना सदण हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छेओ कार छेओ गोर छेओ उपदेश गोर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसया कड़िया पहरा थित्ती वारी माह हुआ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द व जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पाद विमल नान एक पाद गंध वेन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए ते सुदा चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहिया ही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा
ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੇ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਭਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾਰੇ ਮਾਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ।

0: पायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाय।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत,

राखू शरणाय। माण्यों के मान गुरु, ताणियों के तार, न्योटियों की ओट, न्यासरियों के आश्रय, सोडी सुल्तान, तन तन साहिब।

तो खीजी सचो सच त्याया ओनी मंदे पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित्य देवै चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंतरा जाई रखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता कर कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब।

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरु मत सतकर संगत उद्धरिया सोई नाम अचल भगते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रब सुरतर साखे उत्तर दखन पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म तय सके अथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम सिमर कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भगते जन पारण अमरदास गुर को पायो पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरण

0: पर जालप पण गुर अमरदास सो परसन जे
1: तैं पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाण्यो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जान्यो सुपन इक प्रतख इक इक असमे लीनो तीस इक अर पंज सित पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखों अलख है इक इक कर वरण्यो गुरु अमरदास जाले पण तू इक लोड़ है इक मन्यो
2: कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत नावै रावसस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन पल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे मन आवै
3: गुर ज्ञान और ध्यान तत्स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए।

गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चुकाए सर्व निवासी सदा अलिपा सब मह रहे समाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा घर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माधव जिया।